0: राहुल आ जाते हैं।
1: राहुल तो यहाँ नहीं है।
2: अरे बॉबी मिलाओ, यहाँ पर नहीं है। दो मिनट बाद उसकी एंट्री होने वाली है यार, कहाँ है वो, जाकर ढूंढो प्लीज।
1: ओह गॉड, मैं अभी आया।
0: श्रुति श्रुति, राहुल मिला क्या?
3: नहीं मिला।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा?